0: होम 92.2 एफएम, होम इज अ फीलिंग।
1: होम एफएम प्रेजेंट्स तमिल सॉन्ग ऑफ द आवर, तमिल पाट केकलामा, ब्रॉट यू बाय आरू आयुर्वेदा आरएस, आगतिर बिल्डिंग, अलवनकुल, परदुबाई।

0: इस दुनिया में अगर जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है।
1: You're listening to Home 92.2 FM. Home is a feeling.